सचिया बादशा कोई ना वो ना जा मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर
1: जिन्नी नाम ते आया कोई मसकत

धन धन संपा सुख दियो मन सर जय सुख के नानक सुन रे मना सिमरन काहे नारा मत काहे रब सदा राम है सुख दूसर नाम न कोई कहो नानक सुन मना नानक सिमरन गत होए गत होए सुन रे गाईया सिमरन गत जरे

जगत रा सब झूठ है, जगत रा सब झूठ रे मीत रे मी नानक नार हर नार जलंबालो की पीत राम गयो रावण गयो जा गयो बलवार बार नानक तेरे कछु नहीं तेरे कछु नहीं जीव सी।

मोन दी मदार कित सुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है वीर ओ पिगंबर कित गाने ना परत इत भूम हित होय के फिर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीब और दलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिली सन द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोस दी अनेक दाने वावत है शीस कहो गाह भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सोत ना डंडा उत अस टांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डार रहे उर्द मुख मान ते न मुंड ने हरायो वाद ईस कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो शीश पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सूख सौ आग को चरैया फल फूल को पछैया ता सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश बृछन सो माटी को पछैया बोल पूछ लीज जो कुसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठंड सदा वन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न उजलिन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकारे पर शीत काल गुंचर औगा दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसे बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पे पाई है ताप नाथ ताप ना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए ते जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उच्चरत है नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बाज के उपजंग न तरत है कहू भयो मुंडिया सन्यासी कहू जोगी भयो कहू ब्रह्मचारी कहू जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रापसी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई रास करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही के सेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देह राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मानस बे एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व दुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान

उठ आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भज, केते करुत अच हो।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है के ते गंग वासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुआ पे चढ़त के ते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे वाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे झापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब

रेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वेखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न शत्रुं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न शत्रुं न भामं लेखं अभेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धरूपं

न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखंग अभेखंग जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाते अभयाद अद्वै अविनाशी परेयं परापरं पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग कादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न केहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र जो भूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहंग जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न बरणं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनिर्भिखादं अछेदं अवेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न हूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभाद नुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्ते यथापि विभुक्तं गच्छयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं ताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न शर्मं न शाके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं

जच विद्याधरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की भ्रष्ट की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ।

वाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं।

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय अनासन तुट तेज अनकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंशित जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत।

कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद कर्म कहूँ अग्निहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखर टंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपा यतन पार कई तीरथ तीरथ भरम सुभरम गई अग्निहोत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपा यतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सुक्रम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ करत जाचे गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपता सपा यतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं भरत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम।

दीन जमीन जमाजे रचें सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न सोख सुखं जे रोग न सोग न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जे रचयं क्षत्रि छत्र चितं जय राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाख न दोख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सेन्द्रो बिंद नगेन्द नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से

छूत मतंगन गाद प्याद अनाद कतंगन खेद भेद अचेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुकंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे।

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोगता गदग है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पाद चिहन वरण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर मै विशेख अन्न मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइये अगंज आदि देव है कहो सो कैस पाइये जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रम

न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाय को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुरीन है पुरीत है पुराण है अगंज है।

न शीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख न भेग न काम क्रोध कर्म।

किया है, न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र को स्वरूप है।

सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जय बड़े तपस्तपे विषय किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहत।

नर मच्छ मांस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार हे शिव सकर ओम मुख चार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप आद देव गाद तेज नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठोर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसनंगे विखे विराजे शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जागरण देव पूजा घोर के न अधीन सर्व सपद पतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस फन नहनेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त सके महागव गढ़त गाड़ अनंत हार हार कहो सुभ मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जच न जान जेब भूत भव भवान।

बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत में जय गाथ भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आदंत नाद श्री पद परम पुरख अभंज धर्म के अनकर्म जेत कीन तौन पसार देव देव कंदरव किन्नर मछ कछ अपार भूम काज ले थले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु हालक दीन दयाल मुकंद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हुंके काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता बेसुभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम काज ले थले महे जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब कुंचक्रत भे मुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोध सोध थके महासुर

कहो ससम का सो कह दम को कहाँ कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंक राजा कवन हरक सो गह कवन को रुकी रागी कवन कहो तत मोह दमन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को वृष्ट है कहो।

को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार विचार। त्व प्रसाद दीर्घ त्रिभंगी छंद, दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन, दोष निकंदन आदि वृत्ते चरा सुर मारण, पति दोधारण नरक निवारण, गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे, खंडे उदंडे अलख मते। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, रम्भक बर्दन छत्र छिते, आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन, पुष्ट उदंडन रूप ते जंडा सुर चंडन, मुंड बिहंडन धूम्र विदुन सन महक मथे, दान प्रहारण नरक निवारण, नदम उदारण उर्द अधे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, रंभ कबर्दन आदि वृते, डावरूढ़ बंगे बबर बंगे, भुजा फरंगे तेज बरंग, लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे, सैन विमर्दन काल सुरंग, अष्टायुध जमके भूखंड दमके, असिर जमके भुंक फनंग। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, रंभ कबर्दन दैत जिनंग, चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन, खंड अखंडन खून खिते, दामनी दमंकन धुजा फरंकन, फणी फुंकारण जोत जिते, सरधार विबरखण दुष्ट प्रकरखण, पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, भूमा कासल उर्दा थे, दामनी प्रहासन सुछभ निवासन, श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते, रक्तासुर आचन जोत प्रमाचन, हृदय नाचन धर्म वृते, श्रोणंत अचिंती अनल विवंती, जोग जयंती खड़क धरे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, पाप विनाशन धर्म करे, अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण, श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते, फणि अर्फुंकारण बाघ बकारण, सस प्रहारण साध मते, सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन, बोल निवाहन तेज तुलंग। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, भूमा काश पताल जलंग, चाचर चमकारण चुरहारण, धूम धुंकारण द्रप मथे, दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते, मनुज मथंते गूढ़ कथे, करम प्रणासन चंद प्रकाशन, सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, भरम विनाशन धरम धुजे, घुंगुरु घमंकण ससर झमंकण, फणियर भुंकारण धरम धुजे, अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन, दुष्ट प्रणासन चक्र कथे, केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे, अगमथा हे एक वृते। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, आदि कुमार अगाध वृते, सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन, भ्रष्ट विनाशन मृत मथे, कावरु कुमारे अधम उधारे, नरक निवारे आदि कथे, किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन, सिंहारोहण वितल तले। जय जय हो सी सब ठौर निवासन, बाय पताल आकाशन ले, संकटे निवारण नदम उदारण, तेज प्रकार कण दुंद तपे, दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती, आद अनाथ अगाध अच्छे, शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण, तपत प्रतापन जपत जीवे। जय जय उसी सहस्र प्रकार कण, आद अनिल अगाध अभे, चंचला चखंगी अलग भुजंगी, दुंद तुरंगण तिच सरे, कर कसा कुटारे नरक निवारे, अधम उधारे तूर भुजे, दामनी दमंके के हरलंके, याद अतंके क्रूर कथे। जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन, सुंभ चक्रतन सुंभ मथे, बारज बिलोचन मृतन विमोचन, सोज बिसोचन गौज कसे, दामनी प्रहा से सुख सरना से, शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे, चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी, तेज तुनंगी खंड सुरंग। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, आद अनाद अगाधूर्धंग, घंट का विराजे रुण सुन बाजे, भ्रम भाजे सुनत सुरंगो, किल सुन लाजे किल बिक बाजे, सुकूप राजे मध उरंग, दुर्जन दल दजे मंथन रिझे, सब न भजे रोहरणंग। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, चंड चक्रदन आद गुरंग, चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन, रोज रोधन क्रूर प्रते, धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन, जग विदुंसन शुद्ध मते, जाल पा जयंती शत्रु मथंती, दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, आद जुगाद अगाध गते, खत्रियाण खतंगी अभय भंगी, आद अनंगी अगाध गते, बृढ़लाज बिहंडन चक्षुर दंडन, तेज प्रचंडन आद वृते, सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण, दोष निवारण दुख हरे। जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन, विश्व विदुंसन श्रेष्ठ करे, दामने प्रकाशे उन्दर नासे, जोत प्रकाशे अतुल बले, दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण, दुष्ट प्रदरखण।

दुख दुख प्रपक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय ओ सी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ कही।

जय उसी में खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारन नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुच प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मते जय जय ओसी मैं का सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन बिडाल पधे सरधार विवर्कण दुर्जन धरकण अतुल अमरकण धरम धुजे धूमराज विध्वंसन

धन कामल कृपाल दुख दुख हरद दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल धर प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप जल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र जहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदाक। जल धन महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निशिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उतार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई

दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारग नीमन गारे पछ पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको प्रतपार है भोगत है जल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दुखन देखत है पर देत नहारे ताहत है दुख दुखन का जल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमापत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो गुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देवा देव खपे अंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसे थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सुन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाधो भूत भविख भवान भय है अंत भीन नातम आपदाग दुख छिद्र छह है लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मा बदल है काम न क्रोध न रूप न भोग न रोग न शोक न भोग न भय है देह भीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त के है छह है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डूलत है तुमरी सुर सुंदर श्रीपद मा बदल है रोगंते अरसोगंते जल जोगंते बो भात बचावे शत्रु अनेक चलाव दखाव तऊ तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर बाप संभूह न भेट न पावे और की बात कहाँ कह दो सौ सौ पेट ही के पट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा का सब ताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कते वन भेद लगे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत से दसनाथ सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मैं जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अवेद निर्वाण सब बचहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे आद अनाद अगाद अवेग अद्वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरे अगर भेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के चलैया महा सतरन के साल है दान के देवैया महा मान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है जुद के जतैया विरुद्ध

फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मर टांगेल तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेल मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेल बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीस ने आवे ते पते थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो धयो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देव तान को सुरेश दानवान को महेश कंग दान को।

राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धर यद्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहा रूम ही रसी हो सन्ना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के जम्पासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी शशि सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोर जोहियत है गंगा सम गंगधार पकान सी बिलंदावाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके तुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर कखरी गर्दी जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहां जहां।

जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां पर देव गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेअंत मैं अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जाने जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम विदात कर यात्रा।

सुराव हरजन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत।

जवां काहे रे मंचित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आ गए कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊढ़ आवै सैको सा तिस पाछै बछरे छरिया

अह चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रग बर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छ सकै न कोई सम

ना ही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान किता गुरु बेटो, जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तत घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

चरण लागे वाजे अनहद तूरे। ओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सो आधारो जे को खावे जे को भुंजे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

मत ऊची मत पत का राखा आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार। खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिच्छा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन ददार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारन जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान

जी तख्त केसगढ़ साहब आनंदपुर जी कीर्तपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुक्तसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज बाला साहेब बंगला साहेब सतो

जोगी सुनते हम तेलक नाम करतार सुख मूर्त नाम जन काया काकार सत्या मन संत उपजे दिन के विचार दे दे मंगे ससा गुणा सोप करे संसार चोरा

बलहारी कुदरव त्रंतना जल कर जात में जो जुत में जाता अकल कला पर पुरया तू सच्चा साहिब सिंह वाले जिन की तुम

नानक मेर सिरकाए कृत कृत वाओ जुग जुग पेर उठाए ज्ञान पूजताए सात जुग रसंतो कात्र मगृत वाओ त्रे तेरे जते का जोर कृत वाओ द्वापर तपे का सुध कृत वाओ।